0: मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना

0: देव बहुत हो गया, अब बंद भी करो मेरी तारीफ।
1: रहते हो
2: हाय वर्गा स्टार जाहिर वंडा अकेडमी,
3: जंगन बरमाइन अपे तकु तरबकर नंती,
2: सिमक terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Joget.